अभी आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का आराधना चैनल। आइए अब सुनते हैं श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

भगवान के नंदन भगवान के श्री गय गई नंदन भगवान के श्री सुमित्रानंदन भगवान के श्री चारो भैयन के श्री हनुमान जी महाराज के श्री राम।

वृंदावन कृष्ण बलदाऊ की जय, बोलो भाई सब संतन की जय, जय जय श्री सीताराम।

0: श्री राम लला भगवान की
1: जय,
0: श्री हनुमान जी महाराज की
1: जय,
0: जय श्री राम,
1: जय
0: श्री राम,
1: जय
0: जय श्री राम,
1: जय जय।

0: मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत और शबद कीर्तन,
1: कोई बोले राम राम।
0: आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर भी उपलब्ध। आराधना

गोविंद गीता अध्याय 6 आत्मसंयम योग। श्री कृष्ण संन्यास एवं योग की समानता एवं फल तृष्णा के त्याग पर बल देते हैं। प्रभु कहते हैं कि वशीभूत मन ही मानव का परम मित्र होता है तथा वशहीन होने से मन ही परम शत्रु बन जाता है। श्री गोविंद कहते हैं कि सतत यत्न व योग अभ्यास से इस हठी व चंचल मन को भी वश में किया जा सकता है।

0: मन है।
1: अर्जुन का संशय दूर करते हुए ऋषिकेश कहते हैं कि साधन के अभाव में श्रद्धावान किंतु असिद्ध पुरुष एक उच्च सदाचारी परिवार में पुनः जन्म लेता है, जहां वह पूर्व जन्म के बुद्धि संयोग से सिद्धि प्राप्ति हेतु आगे प्रयत्न करता है।

पांच लुटेरे डाल रहे हैं डेरा। ये कौन है लुटेरे जो दिन रात हम सबको लूटा करते हैं और हम इन सबको प्रसन्न रखते हैं, खिलाते पिलाते रहते हैं, ये हमको लूटते रहते हैं। तो इन्हें पहचानिए, इनसे दूर रहिए, नहीं तो सब लूट के ले जाएंगे।

पीयूष पवार जी संगत कर रहे हैं। अब इनका विशेष कमाल देखिए, मैं जो सरगम गाऊंगा ये आपको संतूर पे बजा के सुनाएंगे, जरा ध्यान से सुनिएगा ठीक बजाते हैं कि नहीं बजाते। इनको मैं एक ही शर्त पर बंबई से यहां तक लेके आया हूं कि ठीक नहीं बजाएंगे तो यहां छोड़ के चला जाऊंगा, तो जरा ध्यान से सुने फिर।

बंबई वापस ले जा रहा हूं। इनका एक लड़का है 6 साल का, वो भी बहुत अच्छा संतूर बजाता है और अपने स्कूल में, स्कूल के फंक्शंस में संतूर बजा के सुनाता है तो सब उसे बहुत प्यार करते हैं। तो एक बार उसके टीचर ने पूछा, बेटा बहुत अच्छा संतूर बजाते हो, तुम्हारे घर में और भी कोई संतूर बजाता है? तो उसने कहा, हाँ और लोग अभी सीख रहे हैं। फिर टीचर ने पूछा, बेटा तुम लोग कितने भाई बहन हो? तो उसने कहा, हम लोग 14 भाई बहन, 8 भाई हैं, 6 बहनें। तो टीचर ने कहा, सच में? कहता, हाँ जी सच में। फिर टीचर ने पूछा, बेटा तुम्हारे पिताजी क्या काम करते हैं? उसने कहा, वो यही काम करते हैं। क्योंकि टाइम मिलेगा तो और कुछ करेंगे।

तो कितना अच्छा हो, आप भी गाइए, हम भी गाएं, सब मिलकर ये पुण्य कमाएं। तैयार हो जाइए, पहले मैं गाऊंगा, आप सुनिए, फिर आप गाइए, मैं सुनूंगा।

पूरे देश भारत की प्रमुख नदी गंगा केवल एक जलधारा नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति की प्रतीक है। युगों युगों से भारत के आध्यात्म और वैराग्य को सींचने वाली अनवरत अमृत धार है गंगा।

0: हमारी आस्था, हमारे जीवन, हमारी ऊर्जा और उल्लास की नदी है गंगा। पवित्रता और निर्मलता की जलधार है गंगा।
1: मानव के पंचकर्मों में एक है गंगा, शिव का रूप है, विष्णु का अंश है, ब्रह्म पोषित है गंगा।

0: गंगा वो नदी है जो मनुष्य ही नहीं बल्कि देवताओं को भी प्रिय है। महाकाल, मृत्युंजय, महासत्य, महादेव शिव की प्रिय है गंगा। उनके पुत्रों कार्तिकेय और गणेश को अस्तित्व प्रदान करने वाली गंगा ही है। तभी तो गणेश को गंगे भी कहते हैं।
1: गंगा के किनारे ही महात्मा बुद्ध को बोधि गति प्राप्त होती है। अपने पांच शिष्य मिलते हैं। रामायण की कथाओं में गंगा कभी प्रभु राम और केवट के मिलन की साक्षी बनती है, तो महाभारत में शांतनु की पत्नी और भीष्म पितामह की माता बनकर सामने आती है। भगवत गीता में भगवान कृष्ण स्वयं कहते हैं, मैं नदियों में गंगा हूँ।
0: गंगा अवतरण से जुड़ी कई रोचक कहानियां हैं। शिव पुराण के अनुसार गंगा हिमालय की पुत्री और पार्वती की बड़ी बहन है। जब भगवान शिव अपनी पहली पत्नी सती के बलिदान के बाद मानसिक संताप से गुजर रहे थे, तब सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ने शिव का पुनर्विवाह गंगा से करा दिया।
2: हर हर गंगे, गंगे, हर हर गंगे, गंगे।
1: मान्यता है कि गंगा ब्रह्म लोक से शिव की जटा में आई, परंतु शिव ने उन्हें अपनी जटाओं में रोक लिया। राजा भगीरथ के अनुरोध पर उन्होंने अपनी जटाएं निचोड़ कर छोड़ी, जिससे अनेक धाराएं निकली। इनमें तीन प्रमुख हैं, अलकनंदा, मंदाकिनी और भागीरथी। शिव ने अपनी जटा से एक धारा पृथ्वी पर उतारी, जिसे मंदाकिनी नदी मानते हैं। दूसरी धारा स्वर्ग चली गई, जिसका नाम अलकनंदा हुआ। यही धारा स्वर्ग से उतरकर बद्रिकाश्रम से प्रवाहित होती है। तीसरी धारा भागीरथ के रथ के पीछे चलकर देव प्रयाग आई और भागीरथी कहलाई।
0: भागीरथी नाम की इस जलधारा का संगम देव प्रयाग के पास अलकनंदा से होता है। फिर आगे बढ़ती ये सरिता तीर्थ रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी को समाहित करती है। यहीं से इस निर्मल जलधारा का नाम गंगा होता है।

हिंदू पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ मास की दशमी को पृथ्वी पर गंगा का अवतरण हुआ है। ये दिन गंगा दशहरा के रूप में मनाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन गंगा में लगाई एक डुबकी पापों से मुक्ति दिला देती है।

0: कुरु।
1: हे माँ गंगा, हे यमुना, हे सरस्वती, हे नर्मदा और सिंधु कावेरी, सभी कृपा करो और प्रकट हो इस जल में, जिससे मैं अपनी शुद्धि कर सकूं।
2: गंगा अवतरण की कथा का आधार भागीरथ ऋषि द्वारा अपने पूर्वज रघुकुल राजा सगर के पुत्रों को मुक्ति दिलाना है, जो कपिल मुनि के शाप से भस्म हुए थे। सगर के पुत्र जहां ऋषि के शाप से भस्म हुए, वो पश्चिम बंगाल में स्थित गंगा सागर नामक स्थान है, जहां गंगा सागर की गोद में समा जाती है। गंगा देश की प्राकृतिक संपदा ही नहीं, जन जन की भावनात्मक आस्था का आधार भी है। गंगा नदी नहीं बल्कि एक संस्कृति है। पुराणों में पावन पतित पावनी पाप तारिणी गंगा को माँ का स्थान दिया गया है। गंगा हमारी भारतीय सभ्यता का रूप है।
1: उत्तर भारत में हिममंडित हिमालय के गोमुख नामक स्थान से निकलकर लगभग 2,500 किलोमीटर तक दक्षिण पूर्व दिशा में प्रवाहित होकर गंगा सागर के पास बंगाल की खाड़ी में विलीन होती है। गंगा
2: उत्तराखंड से लेकर बंगाल की खाड़ी के सुंदरवन तक विशाल भू रचना करती है। सबसे पहले बात गंगा नदी बेसिन के महत्व की बता रहे हैं जल आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर ए.के. पांड्या।
3: गंगा बेसिन जो है हमारा, वो देश का सबसे बड़ा रिवर बेसिन है, जिसमें कि हमारी सबसे ज्यादा जनता भी वहाँ रहती है, और साथ ही साथ में ऑलमोस्ट हमारे कंट्री का करीब करीब 43% जितना एरिया को वो कवर करता है, और उसका पानी जो है वो, जो कि अल्टीमेटली हम उसको, जिसको गंगा नदी के रूप में जानते हैं, उसमें फरक्का तक जाके मिलता है। और करीब करीब साल में एवरेज 525 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी उसमें एवरेज जाता है। गंगा जो है वो हमारी एक जीवनदायिनी नदी है, और उसके ऊपर हमारा बहुत बड़ा आधार है, हमारे खाद्य सुरक्षा के लिए और हमारी पानी की सुरक्षा के लिए।
1: हिमालय की पहाड़ी ढालों से नीचे उतरकर पावन तीर्थ नगरी हरिद्वार से मैदानी भाग में प्रवेश करती है गंगा। हरिद्वार में गंगा घाट पर गंगा स्नान के लिए तीर्थयात्रियों की भीड़ लगी रहती है।
2: हरिद्वार के आगे उत्तर प्रदेश के मैदानी भागों में गंगा की धारा का स्वरूप बदलने लगता है। अपनी कई सहायक नदियों की जलराशि प्राप्त कर लेने से इसके जल प्रवाह में विशालता आती है।
1: गढ़ मुक्तेश्वर से दक्षिण पूर्व की दिशा में गतिमान होती गंगा की धारा संगम नगरी प्रयाग पहुंचती है, जहां गंगा यमुना और अंतःसलिला सरस्वती का संगम स्थल है त्रिवेणी।

0: त्रिवेणी से अपनी सहभागिनी यमुना की विशाल जलराशि अपने में समेटकर गंगा पूर्व की दिशा में बहती हुई भारत की गौरवमय संस्कृति की प्रतीक के रूप में प्रसिद्ध काशी नगरी पहुंचती है। काशी, जिसका आधुनिक रूप में प्रचलित नाम बनारस या वाराणसी है, संसार के प्राचीनतम सजीव नगरों में से एक है और गंगा तट पर बने अनगिनत घाटों के लिए सारी दुनिया में मशहूर है।
1: माना जाता है कि काशी नगरी भगवान शिव के त्रिशूल पर टिकी है, इसलिए इस शिवप्रिया नगरी में गंगा का भव्य स्वागत होता है।

0: गंगा के तटों की महिमा और गंगा की सांस्कृतिक विरासत पर डॉक्टर के आर शर्मा की बात याद आ गई। आप भी सुनिए।
1: हमारे हिंदू धर्म में जो भी कार्य है वो गंगा से जुड़ा हुआ, जो जीवन यापन है वो उसमें समय समय पर गंगा जल का योगदान होता है।

0: जल के कुछ बूंदे चली जाएं तो उसके जीवन पवित्र हो जाए। साथ में ये भी आप देखेंगे कि उसी गंगा के तट पर लोगों की इच्छा होती है कि हमारी अंतिम संस्कार भी उसी गंगा के किनारे हो। तो जीवन के शुरुआत से लेकर जीवन के अंत तक गंगा की महत्ता हिंदू समाज में आप पाएंगे।
1: तीन लोक से न्यारी काशी, ये कहावत सदियों से प्रचलित है जो काशी नगरी के न्यारेपन को उजागर करती है। गंगा के महत्व को बखान करती हुई पूर्व प्राध्यापिका डॉक्टर इंदिरा शर्मा कहती हैं,
2: गंगा के जल में कुछ ऐसे तत्व पाए गए हैं जिनके कारण हम इस नदी को एक पवित्र और अमृत तुल्य नदी मानते हैं। हम अपनी जो जर्नी है उसको अगर हम ऋषिकेश शुरू करते हैं तो वहीं से ये गंगा जो है एक तीर्थ के रूप में हमारे सामने उभर कर सामने आती है। यद्यपि जहाँ हिमालय पर्वत है वहाँ तो तीर्थ है ही, गोमुख तीर्थ है ही, लेकिन विशेष रूप से जहाँ तक जन साधारण इस तक पहुँचा है उसको हम ऋषिकेश से मानते हैं। जहाँ पर ये मैदानी भाग में आती है, यद्यपि इसकी जो धारा है बड़ी तीव्र गति से बहती है, लेकिन इसके किनारे मंदिर, आश्रम, ऋषियों के आश्रम रहे हैं जहाँ पर लोगों ने वेद ऋचाएं गाई हैं, अपने धार्मिक ग्रंथ लिखे हैं, वहाँ से इसकी महत्ता जो है वो शुरू होती है। हमारे जीवन में ये इस कदर रच बस गई है कि हर भारतीय का ये सपना होता है कि जीवन में वो गंगा के किनारे जाए, उसमें स्नान करे और उसको ऐसा विश्वास है कि उसके जितने पाप हैं वो सारे धुल जाते हैं और उसकी आत्मा जो है पवित्र हो जाती है।
1: मंदिर, मस्जिद, पंडे, पुजारियों के इस शहर में विभिन्न संस्कृतियों के रूप देखने को मिलते हैं। एक ओर काशी विश्वनाथ और संकट मोचन का दिव्य स्थान है तो दूसरी ओर कबीर चौरा और संत तुलसीदास का तुलसी घाट। नृत्य विशारद बिरजू महाराज हों या शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्ला खां, महान साहित्यकार भारतेंदु और महाकवि जयशंकर प्रसाद इसी नगरी के निधि रहे हैं। महामना मदन मोहन मालवीय की देन बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यही गंगा तट पर स्थित है। भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्ला खां रोज सुबह अपनी शहनाई गंगा जल से धोते थे। उन्हें गंगा बहुत प्रिय थी। जब भी बनारस में होते थे तो गंगा को अपनी शहनाई सुनाना नहीं भूलते थे।
3: भारतीय साहित्य भी गंगा के स्तुतिगान से अछूता नहीं रहा है। कई रचनाएं गंगा को ही समर्पित की गई हैं। पंडित जगन्नाथ की गंगा लहरी उनमें से एक है।
4: समृद्धम सौभाग्यम सकल वसुधाया किमपि तं महेश्वर्यम लीला जनित जगत खंड परशो।
1: तीर्थ नगरी काशी के मनोरम घाटों से आगे प्रवाहित होती हुई गंगा धारा मालवीय पुल से आगे मुगल सराय होती हुई बिहार प्रदेश में बक्सर पहुंचती है। मान्यता है कि भगवान श्री राम ने अपने गुरुदेव के साथ जनकपुर स्वयंवर में जाने के लिए यहीं से गंगा को पार किया था जो अब रामघाट के नाम से प्रसिद्ध है।

0: बक्सर से आगे चलकर गंगा पहुंचती है पटना, यानी बिहार की राजधानी पाटलिपुत्र। मंद मंद गति से पूरब की ओर प्रवाहित होती गंगा की धारा पटना पहुंचने के पहले सरयू और सोण नदी की जलधाराओं को भी अपने में समेट लेती है।
1: दीपावली के 6 दिन बाद जब छठ पूजा मनाई जाती है तो यहाँ गंगा के घाटों पर आस्था और विश्वास की एक अद्भुत छटा देखने को मिलती है।
2: छठ की पूजा में गंगा के अंदर हम खड़े होकर पूजा करते हैं, सूर्य को प्रणाम करते हैं, तो गंगा मैया से भी मांगा जाता है, केवल सूर्य से नहीं।
1: आप हैं प्रसिद्ध लेखिका और संपादक।

0: डॉक्टर मृदुला सिन्हा।
1: मांग होती है सब चीज की, और उसमें अन्न है, जल है, धन है, सब कुछ मांगते हैं, लेकिन गंगा से भी मांगते हैं और सूर्य से भी मांगते हैं। वहाँ दोनों को समान आसन पर बैठा दिया जाता है, इसलिए मुझे लगता है कि गंगा को लोक जीवन से और संस्कृति से अलग करके नहीं देखा जा सकता। और सही बात तो यह है कि गंगा हमारी संस्कृति का एक बहुत बड़ी प्रतीक है, जो इसकी अविरल धार है, और वो बहती रही है, बहती रहेगी।

0: गंगा परिवहन का जरिया रही है, अब भी है। गंगा के इस पक्ष के बारे में विस्तार से बताते हुए पूर्व प्रशासनिक अधिकारी और लेखक श्री दुर्गादास गुप्ता।
1: नेशनल वाटरवे की तरह है, आज से नहीं हजारों साल से। छोटे नाव, बड़े नाव, सब पे चल करके लोग जाते आते थे, उनकी यात्राएं हुआ करती थी, लोग जाया करते थे, माल ढोया जाता था। उसका आज भी उदाहरण ये है कि छोटे छोटे इस ज़माने में भी बजरे पे सामान लेकर के लोग जाते हैं, लेकिन जगह जगह चुके इतना बॉटल नेक आ गया है नदी में कि अब वो आगे नहीं बढ़ता है। लेकिन इसी संदर्भ में मैं ये कहूँ कि अगर रेलवे के ऊपर, सड़क के ऊपर से अगर आपको भीड़ कम करनी है तो एक विकल्प के रूप में आपको देखना चाहिए कि जो लोग आराम से चलना चाहते हैं, आराम से देखना चाहते हैं भारत को या भारत के इस हिस्से को, तो उनको बजाय पैलेस ऑन व्हील्स के या राजधानी के, वो गंगा को इस तरह से विकसित करना चाहिए ये यात्रा करने का कि लोग उसको, उसका सुखद अनुभव ले सकें और लोग समझ सकें कि हमारी परिपाटी क्या है, हमारी परंपरा क्या रही है, गंगा का महत्व क्या है इस बारे में। क्योंकि जब तक हम इसको हरिद्वार से लेकर के और नीचे हुगली तक नहीं जाते हैं तो हम गंगा कितनी महान है, गंगा की क्या आवश्यकता है, गंगा कैसी थी, कैसी है, कैसी होनी चाहिए, ये हम उस दृष्टिकोण को नहीं विकसित कर पा रहे हैं। और जहाँ तक गंगा के सफाई की बात है, गंगा जब तक साफ नहीं होगी तो परिवहन उसके ऊपर नहीं हो पाएगा। और नई टेक्नोलॉजी से गंगा को साफ करना होगा, ड्रेजिंग होनी चाहिए, फ्लोरा फौना को बचाना चाहिए और उसके ऊपर परिवहन जो हो, पैसा जो खर्च हो, उससे कमाई हो, उसका एक अलग कोष बने और गंगा को और दूसरी नदियों को धीरे धीरे करके उस कोष से जोड़ देना चाहिए।
0: नदियों को जोड़ने और उन्हें परिवहन का एक माध्यम बनाने की प्रक्रिया पर सोच विचार किया जा रहा है। इतिहास के परिप्रेक्ष्य में गंगा के बारे में श्री दुर्गादास गुप्ता आगे कहते हैं,
1: हजारों हजार साल से ये वाटर हाईवे था और रही है, जिसका उपयोग होता रहा है, लेकिन दुर्भाग्यवश कोई हमारे पास इसका रिकॉर्ड नहीं है। इसलिए सबसे पहले तो मैं ये कह दूं कि अगर गंगा को समझना है, गंगा के बारे में बात करनी है, गंगा की महत्ता समझनी है आध्यात्मिक दुनिया से बाहर निकल करके, तो सबसे पहले एकेडमिक वर्ल्ड को ध्यान देना पड़ेगा कि गंगा के ऊपर या नदियों के ऊपर स्कूल ऑफ स्टडीज़ बने। काफ़ी जियोलॉजिकल डेटा है, जियोलॉजिकल हिस्ट्री बहुत है, लेकिन वो स्टडी, जो इन डेप्थ स्टडी, जो सघन अध्ययन होना चाहिए, वो अभी तक नहीं हुआ है।

पटना शहर गंगा तट के दाएं किनारे पर दीघा घाट से लेकर पूर्व में फतुहा तक फैला है। इसे विशाल साम्राज्यों की राजधानी होने का गौरव प्राप्त है। चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त और महान गुरु चाणक्य की कर्म भूमि रहने का संयोग इसी पाटलिपुत्र को मिला। चंडाशोक से अशोक बना मगध का सम्राट यहीं गंगा तट से अहिंसा और करुणा का संदेश दे गया।

0: सोनपुर और हाजीपुर के बीच गंगा में आकर मिलती है नेपाल में हिमालय से निकलकर आने वाली गंडक नदी। यही वो स्थान है जहां हर साल विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला लगता है।
1: तो हर महिमा आगमा अपार है गंगा मैया।
0: अनेक छोटी बड़ी नदियों की विशाल जलराशि लेकर गंगा अपने स्वरूप का विस्तार करती है और पहुंचती है सुल्तानगंज। यहाँ की विशेषता और गंगा के बारे में बताते हुए पूर्व राजदूत और सांसद डॉक्टर गौरी शंकर राजहंस कहते हैं,
2: भागलपुर जिला में गंगा का महत्व सुल्तानगंज के गंगा से है। गंगा जब चलती है हरिद्वार से बंगाल की खाड़ी की ओर, तो दो जगहें ही ऐसी जगह है जहां उत्तर वाहिनी गंगा है, एक तो बनारस में और एक सुल्तानगंज में। उत्तर वाहिनी गंगा का बहुत ज्यादा महत्व है। लोग वहां यदि स्नान कर लेते हैं तब ऐसा लगता है कि जैसे उन्हें असीम शांति प्राप्त हो गई। अभी भी हर साल लाखों लोग सुल्तानगंज से पैदल देवघर जाते हैं और बाबा बैद्यनाथ के ऊपर सुल्तानगंज का पवित्र गंगा जल चढ़ाते हैं। सुल्तानगंज का पहले नाम गंगा धाम था। औरंगजेब ने इसका नाम बदलकर सुल्तानगंज कर दिया, जहां उसके फौजी छावनी डालते थे और वहीं से वो लोग बंगाल आसाम पर कूच करते थे। सुल्तानगंज में ही लोग कहते हैं अजगवीनाथ मंदिर में जहनु मुनि रहा करते थे, जिनके नाम पर गंगा का नाम वहां से जहनवी पड़ा। एक बार किंवदंती है कि जहनु मुनि ने गंगा को पी लिया क्योंकि गंगा बहुत किलोल करती थी। भागीरथ ने बहुत अनुनय विनय किया, तब जहनु मुनि ने गंगा को अपने जांग को चीर कर गंगा को निकाला। अभी भी सुल्तानगंज के बगल में एक गांव है जिसका नाम जहनु मुनि पर है और अपभ्रंश होते होते अंग्रेजों के टाइम में इसका नाम जहांगीरा पड़ गया। बहुत ही भव्य दृश्य है सुल्तानगंज के गंगा का, और देवघर की कल्पना नहीं कर सकते हैं यदि सुल्तानगंज की गंगा का जल वहां नहीं पहुंचे। सुल्तानगंज और देवघर का संबंध बहुत ही निकटतम है।
3: संस्कृति और विधा वैभव का केंद्र भागलपुर से आगे पूर्व की ओर स्थित है फरक्का बराज यानी गंगा नदी पर बना विशाल जल अवरोधक। एक समझौते के अनुसार गंगा जल का एक उचित हिस्सा बांग्लादेश की ओर प्रवाहित किया जाता है।
0: फरक्का से आगे गंगा की शेष धारा हुगली के नाम से पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता पहुँचती है। यहाँ इसके किनारे स्थित है माँ काली का प्राचीन और विशाल दक्षिणेश्वर मंदिर, जो रामकृष्ण परमहंस की साधना स्थली भी रहा है।
3: पर्वतराज हिमालय से निकलकर लगभग 2500 किलोमीटर का प्रवाह पथ तय करने के बाद गंगा की धारा पहुंचती है डायमंड हार्बर, जिसके आगे बंगाल की खाड़ी का लहराता सागर और सुंदरी वृक्ष वाले सुंदर वन के जंगल फैले हैं।
0: गंगा कई हिस्सों में बढ़ती हुई धरती लोक पर अपनी यात्रा के अंतिम पड़ाव गंगा सागर पहुँचती है। मान्यता है कि यही वो स्थान है जहां माँ गंगा ने भागीरथ के पूर्वजों का उद्धार किया था।
3: इस स्थान का बहुत सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व है। मकर संक्रांति के दिन यहां लाखों लोग स्नान करने आते हैं। तभी तो कहा जाता है कि सभी तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। भारत में अनादिकाल से ही गंगा जीवनदायिनी और मोक्षदायिनी रही है। भारतीय संस्कृति, सभ्यता और अस्मिता की प्रतीक रही है। उसकी अविरल और निर्मल सतत धारा के बिना भारतीय अस्तित्व और संस्कृति की कल्पना नहीं की जा सकती।

0: स्वर्ग से धरती पर उतरकर सभी को अपने आंचल में समेटती, दोष मुक्त करती, अभय दान देती गंगा सागर से मिलकर पाताल लोक चली जाती है और त्रिलोक गामिनी बन जाती है। जो मानव कल्याण के लिए धरती पर उतरती है वो गंगा है, जो मानव को स्वर्ग तक ले जाती है वो गंगा है।
1: सदियों से भारत की धरती पर बहती हुई गंगा इस देश की पहचान बनी हुई है, पर अफसोस की बात यह है कि वही गंगा अब अपनी पहचान खोती जा रही है।

0: गंगा थक रही है, मर रही है।
1: गंगा बहती हो क्यों?
0: अपनी अज्ञानता, लालच और स्वार्थ से हमने इसे इस हद तक प्रदूषित कर दिया है कि आज मोक्षदायिनी गंगा अपने मोक्ष के लिए हमसे मदद मांग रही है।

क्या दृश्य है, कन्हैया और मैया दोनों एक दूसरे के गले से लगे आंसू बहा रहे हैं। दोनों जानते हैं माखन खाया है और दोनों कह रहे हैं माखन नहीं खाया। कन्हैया ने देखा अब तो माँ मान गई है, अब झूठ बोलने से क्या फायदा। शब्दों का चमत्कार देखिए, कन्हैया ने अपने इन्हीं शब्दों में स्वीकार भी किया। अचानक कन्हैया ने माँ के आंसू पोंछे और देखिए मुस्कुराते हुए क्या कहने लगे,

भक्त जनों, आइए आज अपने भीतर अपनी अंतरात्मा का साक्षात्कार करें और उसी से कुछ प्रश्नोत्तर करें। प्रश्न है,

इस जगत का पालनहार अपने भक्तों से जैसे प्रेम करता है, वैसे ही अपने भक्तों की परीक्षा भी लेता है। हर भक्त के लिए प्रभु के दरबार के द्वार हमेशा खुले रहते हैं, मगर ईश्वर तक पहुंच पाना आसान काम नहीं। परमेश्वर की प्राप्ति के लिए हम पूजन, अर्चन, भजन, कीर्तन, नाम सुमिरन, उसका मनन चिंतन करते हुए आराधना के अलग अलग मार्गों का सहारा लेते हैं, मगर ये सब करते हुए भी जब ईश्वर का साक्षात्कार ना हो तो भक्त हरि से शिकायत के स्वर में याचना करता है, मैं कौन सी राह अपनाऊं कि प्रभु तेरे दर्शन हों।

भगवान राम 14 वर्ष का वनवास पूरा करके आज अयोध्या पधार रहे हैं। अयोध्या के सारे निवासी एकटक भगवान राम की राह देख रहे हैं। वो अखियां जो सोई नहीं जब से भगवान राम अयोध्या छोड़ के वनवास को गए, आज उन्हीं आंखों को विश्राम मिलेगा। भरत के हृदय में बड़ा आनंद है कि आज भैया आएंगे, दर्शन देंगे, इस नगरी को फिर से अपनाएंगे और इस सिंहासन का कार्यभार फिर से संभाल लेंगे। मां कौशल्या के हृदय में उमंगे उठ रही कि आज मेरे राम आ रहे हैं। बस यही भाव इस भजन में है, आइए इस भजन का आनंद लेते हैं।

अवध जब आएंगे मेरे राम, अवध जब आएंगे।

पूछे अवध के नर और नारी, रास्ता देखे महल अटारी, पूछे सिंहासन के खड़ाऊं,

शिव महिमा। प्रस्तुत है शिव पुराण एवं अन्य पुराणों और उपनिषदों पर आधारित यह कार्यक्रम शिव महिमा।

0: देवाधिदेव महादेव की लीला के पिछले प्रकरण में आपने सुना कि दैत्यों के धर्म नाश के पश्चात भगवान शिव शंकर त्रिपुरासुर वध के लिए उद्धत हुए। शंकर रूपी अपने काल को समक्ष देख त्रिपुरासुर तारकाक्ष, विद्युन्माली और कमलाक्ष ने उनसे वर मांगा कि वे अपने हर जन्म में महाप्रभु के भक्त बने रहें। भक्त वत्सल भगवान शंकर ने उनकी अंतिम इच्छा पूर्ण की। इसके पश्चात उन्होंने अपने एक ही वाण से त्रिपुर और उसके सब वासियों को भस्म कर डाला और ऐसे अंत हुआ दैत्य माता दिति के वंश का। प्रस्तुत है इसके आगे की कथा। रूपांतरकार और निर्देशक हैं अनिल सूद।
1: महाभाग सूत जी, पिछली भेंट में आपने बताया था कि तारक वंश के विनाश से भी दैत्य अत्याचारों का अंत नहीं हुआ। इस क्रम में अगला महादैत्य जलंधर था।
2: द्विज श्रेष्ठ शौनक जी, जैसा मैंने कहा था, जलंधर की उत्पत्ति का निमित्त स्वयं देवाधिदेव थे।
1: तो सुनाइए ना ये वृत्तांत महाभाग।
2: शौनक जी, त्रिपुरासुर वध के पश्चात जगत कुछ समय के लिए शांत हो गया। एक समय की बात है, देवगुरु बृहस्पति तथा देवराज इंद्र महामहिम भगवान शिव शंकर के दर्शन हेतु कैलाश पर्वत जा रहे थे। महाप्रभु ने अपने भक्तों की परीक्षा लेने के उद्देश्य से रूप बदलकर उन्हें मार्ग में ही रोक लिया।
3: महापुरुषों, आप कौन हैं? किस उद्देश्य से कैलाश पर विराजे हैं?
4: अरे जटाधारी, क्या तू हमें नहीं पहचानता? हम देवेंद्र हैं और ये हैं ब्रह्म ऋषि देव गुरु बृहस्पति। तू कौन है तथा हमारा मार्ग क्यों रोके बैठा है?
3: मैं तो एक साधारण शिवगण हूँ, कैलाश मार्ग की रक्षा के लिए नियुक्त किया गया हूँ।
4: तो जा अपने स्वामी को सूचना दे कि हम इंद्र उनसे साक्षात्कार के लिए आए हैं। अरे दुर्मति, तू अभी तक बैठा है, जाता क्यों नहीं? मैं तुझे अभी अपने वज्र से प्राणहीन करता हूं।
5: अरे ये क्या, मेरा वज्र धराशाही होकर भूमि पर गिर पड़ा और ये शिवगण कुपित होकर ये क्या रूप धारण कर रहा है?
6: देवराज, ये तो स्वयं देवाधिदेव हैं। देखिए, इनका तीसरा नेत्र खुल रहा है।
7: क्षमा महाप्रभु, क्षमा। बृहस्पति का दंडवत स्वीकार करें प्रभु, अपनी इस क्रोधाग्नि को रोक लें प्रभु। देवराज से अनजाने में भूल हो गई प्रभु।
8: देव गुरु बृहस्पति, अहंकार के मारे देवताओं को यह अधिकार नहीं मिल जाता कि वे अपने बल के गर्व पर किसी साधारण व्यक्ति को अपमानित करें।
5: भगवान, आप तो सदैव भक्तों पर दया करते हैं, अपने भक्त वत्सल स्वरूप को सार्थक कीजिए प्रभु।
8: मेरा तीसरा नेत्र खुल चुका है इंद्र, मैं अब अपनी इस क्रोधाग्नि का क्या करूं?
7: देव, आप अपने इस तेज को कहीं और स्थापित कर दीजिए, इंद्र का उद्धार कीजिए प्रभु।

0: गुरु बृहस्पति, हम आपकी बुद्धिमता से प्रसन्न हुए। आपने इस अहंकारी इंद्र को जीवन दान दिलवाया है। मैं आपको जीवन दाता के नाम से विख्यात करता हूँ और अपने नेत्रों की अग्नि को क्षीर सागर में डालता हूँ।
1: अरे महाप्रभु तो अंतर्धान हो गए। देवादि देव की क्रोधाग्नि क्षीर सागर में पड़ते ही ये कैसा दिव्य बालक प्रकट हुआ है। परंतु कैसा विकराल रुदन है इसका। इससे तो संपूर्ण ब्रह्मांड व्याकुल हो उठा है।
2: हे परम पिता ब्रह्मा, कुछ कीजिए, जगत को इस कर्ण भेदी रुदन से बचाइए। इस बालक का नाश कीजिए।
3: हे समुद्रराज, ये बालक किसका है, क्यों इतना रुदन कर रहा है?
4: हे परमपिता, ये तो ज्ञात नहीं कि ये बालक किसका है, परंतु ये अवश्य जानता हूँ कि ये गंगा सागर के संगम में प्रकट हुआ है।
3: लाइए, इसे हमारी गोद में दीजिए।
4: ये लीजिए विधात, आप ही इस बालक के जात कर्मादि संस्कार कीजिए।
5: अरे, अरे ये क्या कर रहे हो बालक?
1: इंद्रदेव,
5: बालक
1: ने रोते रोते परम पिता की ग्रीवा को हाथों से जकड़ लिया है। देव गुरु, पीड़ा के कारण ब्रह्मदेव के नेत्रों में अश्रु उमड़ आए हैं।
5: शांत शांत समुद्र पुत्र, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। मेरे नेत्रों से जो जल निकला है, इसके कारण मैं इस बालक का नामकरण जलंधर करता हूं। ये उत्पन्न होते ही तरुण हो गया है। ये सभी शास्त्रों का ज्ञाता महापराक्रमी महाधैर्यवान तथा महायोद्धा होगा। मुनिश्रेष्ठ शुक्राचार्य।
0: आज्ञा आदि गुरु ब्रह्मदेव।
3: शुक्राचार्य, तारक वंश के अंत के पश्चात आप शिष्यहीन हो गए हैं। हम आपको एक महातेजस्वी शिष्य प्रदान करते हैं। आप इन असुर राज जलंधर का राज्याभिषेक कीजिए, फिर कालनेमी असुर की अति सुंदर कन्या वृंदा से इसका विवाह संपन्न करवाइए।
0: परम पिता, आप धन्य हैं। समय समय पर अपने शिष्य शुक्राचार्य को भी आप शिष्य प्रदान करते रहते हैं। आपका प्रस्ताव अति उत्तम है। कालनेमी की पुत्री वृंदा सर्वथा जलंधर के योग्य है। वो पतिव्रता, सौभाग्यशाली तथा शीलवती है।
3: सागर पुत्र जलंधर।
6: आज्ञा देव।
3: हमारा वरदान है, शक्ति में तुम शिव पुत्र कार्तिकेय के समान होंगे। शिव के अतिरिक्त तुम्हारा वध और कोई नहीं कर सकेगा। मृत्यु के पश्चात तुम वहीं लौट जाओगे जहां से उत्पन्न हुए हो।
6: आपके आशीर्वाद से मैं कृतार्थ हुआ परमपिता ब्रह्मा।
7: दैत्य राज जलंधर की जय हो। दैत्य गुरु शुक्राचार्य राज सभा में आने की अनुमति चाहते हैं।
8: मूर्ख सेवक, दैत्य गुरु को किसी भी सभा में आने की अनुमति की आवश्यकता नहीं, उन्हें तुरंत आदर पूर्वक लेकर आओ।
7: जो आज्ञा दैत्यराज।
8: सभासदों, स्मरण रहे, दिति प्रसंग के पश्चात शुक्राचार्य हम असुरों से खिन्न हैं, परंतु हम असुर उनके मार्गदर्शन की अनुपस्थिति में कुछ भी नहीं है। उनके आदर सम्मान में कमी ना रहे।
7: दैत्य गुरु शुक्राचार्य की
9: जय।
7: दैत्य गुरु शुक्राचार्य की
9: जय।
7: दैत्य गुरु शुक्राचार्य की
9: जय।
0: यशस्वी भव दैत्य प्रजा।

0: दैत्य गुरु, यहां हमारे समीप आसन ग्रहण करें। अपने आगमन का उद्देश्य बताएं दैत्य गुरु।
1: वत्स जलंधर, समुद्र मंथन की घटना के सहस्रों वर्षों के पश्चात भी मेरे हृदय को शांति नहीं मिली है।
2: दैत्य गुरु,
1: मेरे प्रिय शिष्य राहु का कटा हुआ शीश आज भी मुझे द्रवित कर देता है। मैं देवताओं से प्रतिशोध लेने को आतुर हो उठता हूं।
0: दैत्य गुरु, दैत्य भ्राता, राहु का शीश क्यों काटा गया?
1: समुद्र मंथन के पश्चात प्राप्त हुआ अमृत देवता पी गए, परंतु फिर भी अमृत शेष रह गया। राहु ने देवता रूप धारण कर उसे पी लिया।
0: क्या, पी लिया? फिर दैत्य गुरु, उन्हें अमृत तो प्राप्त क्यों नहीं हुआ?
1: इंद्र के पक्षपाती विष्णु ने शेष देख लिया इससे पूर्व कि अमृत राहु के गले से उतरकर उसके शरीर में प्रवेश कर जाता। विष्णु ने उसका शीश काट डाला।
2: दैत्य गुरु, आज्ञा करें दैत्य गुरु, देवताओं के इस कुकृत्य का दंड देने के लिए आपके इस शिष्य को क्या करना होगा?
1: दैत्य राज जलंधर, दुष्ट इंद्र को मेरे पूर्व शिष्यों ने अनेक बार इंद्रलोक से बाहर निकाला। इस बार कुछ ऐसा उपाय करो कि परास्त होने के पश्चात इंद्र लौट ना सके। संपूर्ण त्रिलोकी सदा के लिए तुम्हारे अधीन हो जाए।
2: दैत्य गुरु, ऐसा तो मात्र युद्ध से ही संभव है।
1: तो इंद्र से युद्ध करो। तुम्हें ब्रह्मा का वरदान है, शिव के अतिरिक्त तुम्हारा वध कोई नहीं कर सकता। और वत्स जलंधर,
2: आज्ञा दैत्य गुरु।
1: ब्रह्मा ने वृंदा से तुम्हारा विवाह करवाकर बहुत बड़ी भूल कर डाली है।
2: भूल कर डाली? वो कैसे दैत्य गुरु?
1: तुम्हारी पत्नी का सतीत्व अति तेज में है, वही तुम्हारा सबसे बड़ा बल और सबसे बड़ा रक्षक सिद्ध होगा।
2: दैत्य गुरु, दैत्य गुरु, मैं आपका तात्पर्य नहीं समझ पाया।
1: वत्स, वैसे तो किसी भी पत्नी का पतिव्रत धर्म उसके पति का बल होता है। वृंदा तो अखंड पतिव्रता है, उसके इस धर्म का भेदन ही तुम्हारी पराजय का कारण बन सकता है। और शिव कभी इस बात की अनुमति नहीं देंगे कि विजय के लिए किसी स्त्री का शील भंग किया जाए। अतः तुम निश्चिंत होकर युद्ध करो।
2: आपकी आज्ञा शिरोधार्य है दैत्य गुरु शुक्राचार्य। शुंभ निशुंभ,
3: आज्ञा दैत्य राज।
2: अपनी समस्त सेना इंद्र के नंदनवन में उतार दो, युद्ध होगा। दैत्य गुरु शुक्राचार्य, ये हम क्या देख रहे हैं? मरे हुए देवता पुनः कैसे जीवित हो रहे हैं? हमें तो ज्ञात था कि पुनः जिलाने की विद्या मात्र आपके पास है।
1: देव गुरु बृहस्पति द्रोणगिरि पर्वत से औषधियां ला ला कर ऐसा कर रहे हैं।
2: फिर इस युद्ध का अंत कैसे संभव होगा दैत्य गुरु, कैसे संभव होगा? सभी असुर और देवता मर मर कर जी उठेंगे, फिर आपके संजीवनी मंत्र का महत्व ही क्या रह गया?
1: क्रोधित क्यों होते हो? यदि बल है तो द्रोणगिरि पर्वत को ही चढ़ से उखाड़ फेंको।
2: बल, बल,

0: कीजिए प्रभु।
1: विष्णुदेव, मैं धन्य हुआ, परंतु माते लक्ष्मी, आप इस युद्ध स्थल में?
2: इंद्रदेव, मैं समुद्र मंथन से प्राप्त हुई लक्ष्मी हूँ, अतः समुद्र मेरे पिता हैं। जलंधर की भी उत्पत्ति समुद्र से ही हुई है, अतः वो मेरा भ्राता हुआ। मेरा भ्राता मेरे ही पति द्वारा कैसे मारा जा सकता है?
0: प्रिय, ये युद्ध अच्छाई और बुराई के मध्य है। इसमें ना कोई भ्राता है, ना पिता, और ना ही कोई अन्य संबंधी है।
2: देव, मैं मात्र इतना जानती हूँ कि मेरे तो आप हैं और एक भ्राता जलंधर है। युद्ध से किसी को भी हानि पहुंचे वो मेरी ही होगी। मैंने जीवन पर्यंत आपसे कुछ नहीं मांगा, आज आपसे भ्राता के प्राणों की भिक्षा मांग रही हूँ।
0: देवी लक्ष्मी, आपने तो हमारे समक्ष बहुत कठिन स्थिति उपस्थित कर दी है। ठीक है, मैं जलंधर को स्वयं नहीं मारूंगा, परंतु देवता मेरे भक्त हैं, इनके आग्रह पर युद्ध अवश्य करूंगा। गरुड़राज, युद्ध स्थल की ओर प्रस्थान किया जाए।
1: देव गुरु बृहस्पति, ये क्या, भगवान विष्णु तक जलंधर से परास्त हो गए?
3: अवश्य ही ये कोई शिवलीला है। भगवान विष्णु तो जलंधर की प्रशंसा कर रहे हैं।
0: दैत्यराज जलंधर,
4: आज्ञा देवीश।
0: तुम धन्य हो जो इस महायुद्ध में इतने भयंकर आयुधों से भी भयभीत नहीं हुए। मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। चराचर त्रिलोकी में तुम्हारे समान योद्धा नहीं है। मांगो, वर मांगो।
4: हे देवेश, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे वर दें। आज से आप मेरी बहन तथा सभी कुटुंबियों सहित मेरे ही लोक में निवास करेंगे।
0: परंतु जलंधर, ये संभव नहीं है। हा? हमारा आसन रिक्त हो जाएगा।
4: देवेश, वहां मैं किसी विष्णु भक्त को आरूढ़ कर दूंगा। आपको मेरा ये आतिथ्य स्वीकार करना ही होगा।
2: देव, कुछ ही समय की तो बात है, अनुज का आग्रह स्वीकार कर लीजिए ना।
0: ठीक है देवी, ऐसा ही होगा जलंधर।
4: देवेश, मैं धन्य हुआ। विष्णुदेव, मैं धन्य हुआ।
5: दैत्यों, युद्ध बंद हुआ, प्रस्थान।
1: देव गुरु, ये तो बहुत अनुचित हुआ।
3: हाँ, लेकिन अचानक देवी लक्ष्मी के हृदय में ये भ्राता प्रेम कैसे उमड़ आया,
1: और भगवान विष्णु ने ये बात स्वीकार कैसे कर ली?
3: देवराज इंद्र, महाप्रभु की शरण में जाने के अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं है।
1: हाँ देव गुरु, आप ठीक कहते हैं।
6: नारायण नारायण नारायण,
1: ये तो एक प्रकार से जलंधर विष्णु हरे और देवी लक्ष्मी को अपना बंदी बना कर ले गया।
6: परंतु देवाधिदेव, एक असुर के लिए ये कैसे संभव हो पाया?
7: मुने नारद, किसी भी धर्म परायण व्यक्ति के लिए कुछ भी असंभव नहीं होता, और फिर उसने विष्णु जी को बंदी नहीं बनाया है।

0: उनसे अपना आतिथ्य स्वीकार करवाकर अपने धर्म को अतिरिक्त बल प्रदान किया है।
1: परंतु देवाधिदेव, इस प्रकार तो जलंधर देवताओं की बराबरी के स्थान पर जा बैठा है।
0: बृहस्पति जी, आप तो देवगुरु हैं, अपने शिष्यों को आतिथ्य भाव का महत्व बताते रहते हैं। अतिथि सेवा अर्थात पुण्य का भागी बनना।
1: परंतु देवाधिदेव, यदि जलंधर इसी प्रकार अपने पुण्य बढ़ाता रहा तो एक दिन वो सर्वेश्वर बन बैठेगा।
0: ऐसा संभव हो सकता है बृहस्पति जी, और यदि यही होता है तो इस विधि के विधान को टालने वाले हम कौन?
1: अरे महाप्रभु तो बिना कुछ उपाय बताए ही अंतर्धान हो गए। मुने नारद,
2: कहिए देवगुरु बृहस्पति।
1: नारद, आपने अनेक विकट समयों पर देवताओं का उद्धार किया है, संभवतः महाप्रभु इसीलिए अंतर्धान हुए हो कि इस बार भी आप ही देव कल्याण का उपाय सोचें।
2: नारायण नारायण, कुछ ऐसा ही प्रतीत होता है देवगुरु बृहस्पति। विष्णु भक्त नारद को अपने स्वामी को दैत्य जलंधर कारागार से मुक्ति तो दिलानी ही होगी। नारायण नारायण नारायण। नारायण नारायण, दैत्य राज जलंधर की जय हो।
3: अरे ब्रह्मर्षि नारद, आप हमारी जय जयकार कर रहे हैं।
2: असुर श्रेष्ठ जलंधर जो जय जयकार के योग्य हो उसकी जय जयकार तो करनी ही पड़ती है। मेरे प्रभु द्वारा आपका आतिथ्य स्वीकार करते ही आप मेरे भी तो पूज्य हो गए हैं।
3: आइए विराजिए, यहाँ हमारे समीप आसन ग्रहण कीजिए।
2: नारायण नारायण।
3: नारद मुनि, ये चारों ओर आप क्या देख रहे हैं?
2: आपका वैभव देख रहा हूं दैत्यराज। मैं तो समझता था कि कैलाशपति शिव से अधिक वैभवशाली इस पूरी सृष्टि में कोई नहीं। सहस्रों योजन तक फैले कल्प वृक्ष वन, सहस्रों काम धेनु, स्वयं जटाओं में चंद्रमा धारण किए भोलेनाथ। परंतु
3: परंतु परंतु क्या मुने?
2: यहां आकर तो मुझे अपना विचार त्यागना पड़ा है। नारायण नारायण, क्या नहीं है आपके पास?
3: नारद मुने,
2: ऐरावत हाथी, उच्चय श्रुवा, अश्व, ब्रह्मा जी का हंस युक्त विमान, इंद्रलोक, पाताल, पृथ्वी लोक के समस्त रत्न। जलंधर, आप तो सभी के स्वामी हो, स्वामी। परंतु
3: अब परंतु कैसा मुनिवर?
2: आपके पास स्त्री रत्न नहीं है,
3: है? स्त्री रत्न? महामुने, कालनेमी असुर की अति सुंदर पुत्री वृंदा मेरी पत्नी है।
2: अवश्य है अवश्य है। दैत्यराज, आपके पास सब कुछ ऐसा है जो देवाधिदेव से उत्तम है। परंतु क्षमा करें, देवी वृंदा शिव पत्नी सर्वांग सुंदरी पार्वती के समक्ष उनकी भी आभा फीकी पड़ती है।
3: क्या?
2: मेरे विचार से तो पार्वती जैसा स्त्री रत्न योगी शिव के योग्य नहीं है।
3: भाई,
2: उसे तो आपकी शोभा बनना चाहिए।
3: परंतु मुने।
2: किंतु परंतु कैसा असुराज? जब तुम्हारा बल देख स्वयं नारायण तुम्हारे लोक में

0: वास करने लगे हैं, तो क्या मांगने पर शिव तुम्हें पार्वती नहीं दे देंगे? विष्णु जी के यहां आने से वैसे ही उनकी शक्ति क्षीण पड़ चुकी है।
1: मुने नारद, क्या ऐसा संभव है? क्या मैं उस अति सुंदर नारी पार्वती को ग्रहण कर सकता हूं?
0: नारायण नारायण, कर सकते हो अथवा नहीं, ये तो समय ही बताएगा। परंतु यदि तुम्हारी भुजाओं में बल है तो प्रयास तो तुम्हें अवश्य करना चाहिए। पार्वती तुम्हारे अंक शाइनी हो जाए तो
1: होंगी मुने नारद, अवश्य होंगी।
2: दूत राहु, आज्ञा दैत्यराज, जाओ योगी शिव से हमारे हृदय की इच्छा व्यक्त करो और पार्वती को अपने साथ लेकर आओ।
1: उसका सौंदर्य वर्णन सुनकर हम क्षण भर भी उसके बिना नहीं रह सकते।
2: जाओ, तुरंत अपने साथ लेकर आओ। जाओ।
3: जो आज्ञा।
0: नारायण नारायण नारायण।
4: और परम ज्ञानी शौनक जी इस प्रकार उस महादैत्य की बुद्धि भ्रष्ट कर नारद मुनि प्रसन्नता से लौट गए।
5: अर्थात महाभाग सूत जी जिस धर्म आचरण के बल पर असुर राज जलंधर इतना पराक्रमी और बलशाली बना था, नारद मुनि ने अपने चतुर वाक वाणों से उसे ही भेद डाला।
4: हाँ शौनक जी, यदि प्रवृत्तियां इतनी सरलता से बदल जाती होती तो क्या सभी मानव और असुर देवता ना बन गए होते? कहीं ना कहीं कभी ना कभी प्राणियों के भीतर दबी प्रवृत्तियां सर उठाती ही हैं और उनके नाश का कारण बनती हैं।
5: तो जलंधर के हृदय में जागी इस आसुरी प्रवृत्ति ने उसका कैसे नाश किया महाभाग?
4: ये जानने के लिए तो आपको थोड़ी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी शौनक जी।
6: श्रोताओं, शिव महिमा के आज के प्रकरण में हमने शिव पुराण के रुद्र संहिता के पंचम खंड के 13वें और 14वें अध्याय से प्रसंग लिया था।

उधर प्रजा में भयंकर प्रतिक्रिया होती है। लोग आपस में कानाफूसी करने लगते हैं। कुछ स्त्रियां अपनी बात साधारण जन के बीच रखती हैं।

प्रभु राम, सीता, लक्ष्मण गंगा पार केवट को उतराई देना चाहते हैं, परंतु केवट अपने प्रभु से सहज भाव से उतराई न लेने की भावना प्रकट करते हैं।

गंगा पार होने के पश्चात भगवान प्रसन्न भाव से केवट को विदा कर भारद्वाज आश्रम संगम नगरी पहुंचते हैं, जहां राम, सीता, लक्ष्मण व भक्तगण स्नान, ध्यान, पूजन, भजन और कीर्तन कर रहे हैं।

भरद्वाज आश्रम से भगवान चित्रकूट पहुंचते हैं, जहां कुछ आदिवासी स्त्रियां मिलती हैं और सीता से प्रश्न करती हैं। सीता जी लजा कर कुछ इस तरह कह उठती हैं।

0: मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत और शबद कीर्तन,
1: कोई बोले राम राम।
0: आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर भी उपलब्ध आराधना।

0: की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत और शबद कीर्तन,
1: कोई बोले राम राम।
0: आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर भी उपलब्ध आराधना।

अर्थात हे कात्यायनी, हे महामाये, हे महायोगिनी, हे अधीश्वरी, हे देवी, नंदरायना पुत्र श्री कृष्ण ने अमारा पति बनाओ, अमे तमने प्रणाम करीए छे। आ कात्यायनी नो संदर्भ श्रीमद भागवत में आवी रीते जोयो। मातंगी देवी, मातंगी

हे कात्यायनी देवी, चंद्र सूर्य आणि अग्निरूप त्रण नेत्रोटी विभूषित आपनु आ सौम्य वदन सर्व प्राणी मात्र थी अमारू रक्षण करो। अपने नमन नमस्कार नमन।

शरणागतनी पीड़ा हरनारा देवी आप प्रसन्न था। समस्त जगतनी माता आप प्रसन्न था। विश्वेश्वरी प्रसन्न था। हे महादेवी तमे चराचर जगतना स्वामीनी छो। विश्वनु रक्षण करो।

हे कात्यायनी देवी, हे देवी, अनंत पराक्रम वाला आप वैषमी शक्ति छो, विश्वना कारण रूप आप मूल प्रकृति छो, अखा जगत ने आपे मोहित करी नाख्यू छे।

हे महादेवी, समस्त विद्याओ आपनु भिन्न भिन्न स्वरूप छे। जगत में जेटली स्त्रीओ छे ए तमारा ज स्वरूपो। आहा, कितलो भव्य विचार! खरेखर नारी मात्र नु सम्मान कितलू बधु करवामां आव्युं छे। कदाचित नर ए क्रोध होय पण नारी ए शांति छे। नर ए गृहपति छे तो नारी गृहलक्ष्मी छे। लज्जा, विनय, संयम, संतोष, क्षमा, मित, मधुर संभाषण तो ए साथे ज समता, सहिष्णुता, निरभिमानिता, श्रमशीलता, मितव्ययिता, उदारता, सेवा, शुश्रूषा आदि गुणोथी विभूषित दरेक नारी समाजनी शोभा छे। ए परांबानु स्वरूप छे। आ संदर्भमां यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः। ए मनुस्मृतिनु वाक्य तो जाणीतुं छे કે જ્યાં નારીનું સન્માન છે ત્યાં સર્વદેવોનું સન્માન થાય છે।

நப்பயில் பயிற்சம் அவிநாசி காசி கொண்டாம அப்பனே ராம்.

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।